रचाई। रंगी रंगी पंथी कर कर जिनसी माया जिनु पाई, कर कर देखा कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई।

तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुन गावै करते के जी, जो सब साय का जान होई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनू कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदा आप भी छोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने।

सपर कृपा दिष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्न, घट घट गे बट पट की जन्न, जबद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आ करख कर तो हो कब हूं, तो मैं मिलत देहे तर सब हूं, जेते बदन सठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेवना पावत बेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महा मूड कश भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती, तुमरा लखा न जाहे पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एका रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही पुप्पा, अंडज जेर सेतज किन्नी, उत्पज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल अराजा हब बैठा, कहूं सिमट पयो संक्रे कैठा, सगरी सिष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अपरिच्छा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सगल मलेश करो रणकाता, जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जमन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्यय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब कल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल, कृपा दिष्टन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छवा सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोखते रहा, खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आभा दैलिहो उबारी, सर्व ठावर मोह सहाई, दुष्ट दोगते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ गिरा पूर्ण सब राता, केल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता,

सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकना नर केरा है जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुंतीन कहिज भाद्रव सुधी अष्टमी।

जब ते तुमरे तब ते कौआंग तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक रामान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै।

जागर कीरत आखिया करते का होए बिचारो तिद गर गावो सोहेला सिवरे ओ सर्जन हारो तुम गावो मेरे निर्भो का सोहेला हवार जे सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवाए तिस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन सी सिड़िया जो होवै साहिब सुमेल कर कर एहो पहुचा सदले नित पवन सदन हारा सुमरी है नानक से दे आवन रागासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर को वे सने बाबा जा घर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विस्वै चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होआ सूरज कुरत अनेक नानक करते के केते वेश राधना श्री महला पहला गगन माय थाल रवचंद

सहस मूरत ननायक तोहि, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध चलत मोहि, सब में जो जोत है सोए, तिस दे चान सब में चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अंधन मोहि आय पियासा, कृपा जल दे नानक सारं को, होए जाते तेरा नाए वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर वो परिया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हरलि मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै, जम काल से सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुत सोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर ला, आ गए बसन सोहेला।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

निकसिया क्यों कर जाए, ऐसा सतगुर जे मिले तुठा करे पसाओ, मुक्त द्वारा मोकला

दासंदसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरंते लागे जन आव दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से परोपकारी प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे

अब न जाने। ओत पोजन हर सराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे।

जीवा महा उदास तपी सरथी वह अगर माय होमत प्राण कनका सब है भरभूम दान न्योली कर्म करै भव आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख

नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे करके लिहो होड़ निभावे कहां बुझारत बुझे डोरा निसकैये तो समझे पूरा कहां बिसन बद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन हो तू हस गबन करतार करुणा में दीन बेनती कराय नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवा न चीजो बैराई तासो प्रीत बलवा के गृह पीतर बस अनद केल माया रंग रसाय दृढ़कर बने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लुभ त्रो याहू

पतजाय अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक बस कान मिघोट गवावे एक बीना दे दस भी हर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से होना।

पास अपनी अमान कश बहुर शाल अज्ञान नियमन रोस करे, अपनी पृथ्वी तापी खोबे बहुर का विश्वास ना हो गए। जिसकी बस्त आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मान मात है, उसते चौगन करा नहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत। सर्प हो सर पर होबत जान अनेत, बिरखी छाया शिव नंग लाभे बिन सिंह मन पछताव। जो दि सह सो चालन हाल, लपट रहो ते अंध आधार। बटाऊ सो जो लावे ने, ताको हाथ ना आवे के। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानका बलय लाई। मिथ्या तम धन कुटम सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज ओबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध बिगराल। मिथ्या रथ हस्ति अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखस्था। मिथ्या त्रोम अभिमान, मिथ्या सुपर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवा हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह, मिथ्या स्पर दर्भ को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिरुपाद, मिथ्या रचना भोजन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन पर पुकारा, मिथ्या बास लेद बेकारा। बिन बुझे मिथ्या सपय, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी सागत की आरजा, साज बिना कह हो बस सुचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखा बता के दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन, ब्रेथा बेहाये। मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन ब्रथे सब काम। जो कृपन के निरार दाम, तन तन तेजन जे घट बस्यो। हर नाहू नानक ताके बल बल जाओ। रह तबर कशबर कमावत।

जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाना है, अपना किया आपे माना है, आपे आप करत नबेरा, कसा दूर जनाब कसा बुझावत नेरा। उपाव सियानम सगल ते रहत, सबका जाने आत्म की रहत, जिस भावे तस लड़दा।

जाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में शर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदा खियर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी

राष्ट्रपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नान करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट आंधा ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभेगा आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करहे, कई कोट माया शरम बाहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित आवो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे अर्थ भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरखर बजाए, कई कोट पवन पानी बै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट शशियर सूर नखयत्र, कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर, सगल समग्री अवन सूतारे, नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्ताम सात, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी बेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन पिसाच, कई कोट भूत प्रे सुकल मृगाच, कई सबते नेरा सबू ते दूर, नानका बलिप तरया प्रपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट डरक सुर्ग निवासी, कई गुड़ जन्मे जीवे मरे, कई गुड़ बहु जूनी फिरे, कई गुड़ बैठत ही खाए, कई गुड़ काले थक पाहे, कई गुड़ किए धनवंत, कई गुड़ माया में चिंत, जय जय भाणा तय तय राखे, नान सब प्रभु के हाथे, कई गुड़ भय बैरागी, राम नाम संगतन लिव लागी, कई गुड़ प्रभु को खो जनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई गुड़ दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई गुड़ मांगे।

मन सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब उसको सुख नाई गोए जब जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे गौ बैरी में तब लग ने चलना ही जीत जब लग मोह भगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुरप्रसाद नानक हो छूटे सहज घटे लक उड़ता वे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे न तृप्ता वै खप खप मराय बिना संदोग नहीं गौराजय सुपन मनोरथ वृथे सब गाजय नाम रंग सर्व सुख हो बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण का नाम नापे आप सदा सदा नानक हर जाप करण का नाम करने हास के आद कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किसकी नो स्वपन।

उसका वो करने हार उसते पहन कहो किशो ए थान धनंतर एक सोए अपने चलता करने हार कहो तक कर रंग आभार मन में आमन अपने माए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गने बखयानी सच सच सच बकीना कोट मदे गने बिरले छीना भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन।

अवतार अष्टपति संत के दुख ने आर जा घटाए, संत के दुख ने जमते नहीं छुटाए, संत के दुख ने सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख ने मत होए मलीन, संत के दुख ने सोबाते हीन, संत के हाथे को रखे ना कोए, संत के दुख ने थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करे नानक, संत संग निंदक भी तरह।

नाना विदगिनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना जल्द करे घन माहे पूर्य पूर्ण सब ठाए नाना विदगर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ दिसके सब दिसके ठाऊ जब जब जीवे नान खरनाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब पम नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा सबने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जान गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुविधाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जागा हृदय प्रवेश सत नृत बुझा जय कोय नाम जब ताकी गत होए आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सुटसो करने हार अवरना भूज करत विचार करते कीमित ना जाने किया नानक ज्योत सुभावे सोबरतिया बिस्मन

पर अपने स्यों रहे है समाय। जो होवा होवा सो जाने, प्रभ ने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कह एक ना जाना। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओटले, मंत्र बना तिन जन देह। जिंजन बना प्रभु पिछाता, सोजन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्शन पाप मिटावे। अवर सियान में सगरी शाड़, तिजन की तू सेवा लाग। आवन जा आवन ना जान, आवन जाना हो भी तेरा। नानक तिजन के पूजो सद पैरा सरोप। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नामो। तिसका संग सिख उतराय, नानक हर गुण गाव। अष्टपदी सतगुर सिक्की करा प्रतपाल, सेवक गुण सदा दयाल। सिक्की गुर दुर्मत मल हिरा, गुर बचनी हर नाम उचराय। सतगुर सिक्के बंधन काटा, गुर का सिख बिगाड़ ते हटा। सतगुरु सिको नाम धंधे, गुरका सिख बड़भागी है। सतगुरु सिक्का हालत पल सवारे, नानक सतगुरु सिको जी नाल संभार। गुरका ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सहाय। आपस गो कर कशना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवा के कार्य रास। सेवा कर तो ने कामी, तिसको होत प्राप स्वामी। अपनी कृपा से आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जानना है।

कामे मूर्ख मना सुतमीत कुटम आर बनता अंते कहा हो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार अंते कहा हो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा।

अष्टपदी जब अकारे काशना दृष्टेता पापंत कहते होता जब तारी अपन सुन्न समात बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिहन्ना जावत हर सौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार भ्रमता मोह का कि सोवत परम आपन खेला भरतीजा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनीता बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो के ठाए जब आपे आप अपनी जब दो तरह तब कमर ने डर कमर का डराए आपन चल दाव करने हार कौता कर रंग अपार मन में आपन अपने माहे नान कीमत कह ना जाए आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण का हुप कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहा हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब गौन छुटे गुण बंधन बाधे अपने आप आप ही चर्जा नानक अपन रूप आप ही प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पातोता तय बिन मैल कहा हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान्ध गौन को मान गौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश।

जा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जा तस भावित सृठ उपाय अपने भाणे लाए समाय तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सु सब जगत परोए जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी दत का बेता नानक सकल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता के हा दीन दयाल अनाथ को नाथ

अष्टपदी पूरे गुरकासनोपदेश पार ब्रह्म निकट करपेख सा सा सिमरो गोविंद मनंतरिक उतरय चिंद आस अनित्यागोत्रंग संजना की तूर मनमंग आप छोड़ बेंती करो सा संग अगन सागर तरो हर तन

सुन रसना कहते कर प्रसाद या प्रभधारी नानक रिबी खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सब लोए।

गावी है सुनी है मन रखी है भाव दुख पर हर सुख कर लै जाय गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहै आसमाई।

प्राण है। लेख लेख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे। गावे इंद इदासन बैठे देवत्या अंदर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़ निरखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले।

ध्यान के करहे बेपहूत किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मान जीत जाग जीत

की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संयोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसै आदेश आदे अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश।

तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया परपूर।

कह ना सकत के हूं। अचाल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित ओज कहि जय कोड इंद्र इंद्रान साहे साहान गनि जय तिरपह मही पसुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग।

नमः तंग गंजे नमः तंग बंदे नमः तंग नामे नमः तंग ठामे नमः तंग कर्मं नमः तंग तर्मं नमः तंग नामं नमः तंग तामं नमः तंग जीते नमः तंग पीते नमः तंग बाहे नमः तंग अटाहे

कर्म है। नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्म है। नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं

देहाद है, के राज के रहीम है, के कर्मं करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मान्य, के सर्वत्र दान्य, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पावन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के

है। केसरबत्र तराण केसरबत्र पराण केसरबत्र देश है केसरबत्र भेस है केसरबत्र मान्य दैवंग प्रधान्य केसरबत्र जाप्य केसरबत्र थाप्य

तेरे मुकत विभूत है, प्रभुकत प्रभा है, सोजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समाह तो पराज है, सदा सर्वसाज है,

सर्वे सुर हैं, जगते सुर हैं, ब्रह्मंड से हैं, काल खंड से हैं, पर ते पर हैं, करुणा कर हैं, जपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी धृत हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नारनायक हैं, खल कायक हैं, विश्वम्पर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं,

पाए पदहरे। जीत फिर सब देश दिशान को बाज धोल मृदंग नंगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख पवान के पूबत कौन गने नहीं जात विचारे। श्री पात श्री भगवान परे बिनवंत को अंत के तहाम सिधारे।

नमस्कार तिसि कहु मारी सकल प्रजाजन आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पिशांत जीटी ते कुंचर तूला सब पर कृपा दृहत कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

आप अपनी बुद्ध है जेती बरनद भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा।

संयम रहे कर्म कमाए, सहसे जियो मलिन है किद संयम धोता जाए, मन धोवो शब्द रंगो हस्यो रहो चुतलाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए, इस सहसा में जाए, जियो मैले बारह नहीं मिल, बारह नहीं मिल जियो ता मैले, तिन जन्म जीव हारिया

हारिया। जी हो निर्मल बार हो निर्मल बार होता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कुमाणी कूड़ की सोए पहुचे नाही मन सा सठ समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले।

अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए देखो गुरते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थे कोई पुछो विवेकिया जा।

पावड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता गणते प्रभु न पाइय दूजे परमीता सतगुर मिले जीवत मरै बुझ सच समीता शब्दे होमें खोइय हर मेल मिलीता

0: असंख जप असंख पाओ
1: असंख पूजा असंख तप ताओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ
1: असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख पाक।

0: ब्रह्म पद चोरी ध्यान की करहे बेपूत
1: किंता काल कुवारी काया जुक्त डंडा पंतीत
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत
1: आदेश से आदेश
0: आदे नील अनाद नाहत जग जग एको वेश
1: पुक्त ज्ञान दया भंडार कट कट वाजह नाद
0: आप नाथ नाथी सब जाकी रिद

0: पीतः
1: त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है
0: अनिल है नाद है अजय है अनजाद है
1: अजन्म है अबाण है अपूत है अपान है
0: अगंज है अपंज है अचूज है अजंज है
1: अमीक है रफीक है अतंध है अपंध है
0: बूझ है असूज है अकाल है अजाल है
1: अला है अजा है अनंत है महंत है
0: अलीग है निसरीग है निलंब है असंभ है
1: अगम है।

0: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व दृश्य नमो सर्व कृष्य
0: नमो सर्व रंगे दर्पंगे अनंगे
1: नमो जीव जीव नमो बीज बीजे
0: अखे जय अभेजय समस्त प्रसेजे
1: कृपाल स्वरूप कर्म प्रणासी
0: सदा सर्वदा रिद सिद्ध न्यास रिद सिद्ध निवासी
1: चर प्रशांत अवसाद अमृत कर्मे अमृत।

0: जागे जात पास नाम
1: गर्भ गंधन दुष्ट पंचन मुक्त दायक काम
0: अवरूप अमीकन उस्त एक पुरख अवधूत
1: गर्भ गंधन सर पंचन आदरूप सूत
0: अंगहीन भंग नादम एक पुरख पार
1: सर्वदायक सर्व कायक सर्व कौपत पार
0: सर्वगंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शास्त्र न जान ही रूप रंग अरेख
0: परम वेद प्राण जाके नेत पाख नेत
1: गौत सिमरत प्राण शास्त्र न आवे वो चित्त
0: मद पार सिमरत प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार
1: आसन अपांग उपानांग
0: अनुभव प्रगाढ़ निर्दिन अनास
1: आजम्बा।

0: केसरबा तर सोख है केसरबा तर पोख है
1: केसरबा त्राण है केसरबा तर प्राण है
0: केसरबा तर देश है केसरबा तर पेश है
1: केसरबा तर मान है सदैव प्रधान है
0: केसरबा तर चापी है केसरबा तर थापी है
1: केसरबा तर पान है केसरबा तर मान है
0: केसरबा तर इंद्र है केसरबा तर चंद्र है
1: केसर मंगल है के पर मंगल है
0: के अकल अलाम है के साहिब कलाम है
1: के असन जो है तो बाबू रजू है।

0: भक्त प्रभा है,
1: अनोक्त स्वरूप है, प्रदुक्त अनूप है,
0: शान अभंग है, नंग है, वेग है, लेख है,
1: परम है, कर्म है, अनाथ है, जगात है,
0: जय है, वह है, भूत है, दूत है,
1: नाश है, उदास है, तंत है, अबंध है,
0: भक्त है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है,
1: निचिंत है, सुनित है।

सर्वं हन्ता सर्वं गता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं खर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं जगता सर्वं मुक्ता सावल शांत नर

0: आर्य है,
1: रिफिल चकान है, रासल फकान है,
0: लम संस्मरणास है, स्वस्त अनुवास है,
1: फकान जल का नेम है, रजायक रहीम है,
0: स्वस्त जबान है, किसायब करान है,
1: के नरकंग प्रनास है, वह हिस्तल नवास है,
0: के सर्वल गान है, हमेशा लवान है,
1: गमामल तमीज है, समस्तल जीज है,
0: परम परम ईज है, स्वस्त अदीस है।

0: बंग है और दोबारा छंद तो है प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मदाम
1: हर बर गण हर नर भगवान जय
0: अन गण प्रणाम मन मन सलाम
1: हर नर खंड बन नर मंड अनुभव नास मन प्रकाश
0: गण गण प्रणाम जल थल मदाम
1: अंचे जंग आसन भंग
0: उपमा पार गत मित्र दार
1: जल थल मंड देश सपंड
0: जल थल महंत देश विश्वंत
1: अनुभव नास तर तुरास
0: आजन भाव सहन साव है
1: आजान बाहे के साह ओंकार कहनी नाद
0: खंड ख्याल कर बड़ा काल
1: कर कर हुनाम चित चरना
0: आंचे जगाता जे जना बात
1: आंचा जगात हना जे बात
0: अंतोत प्रतार अंटाठा पार
1: आड़ी स्तम टीट कर्म
0: अन पर प्रणांत मताता महंत
1: हर बोल मना शांत प्रसाद करना लिया है रखा लिया है
0: कल खंडल है मल मंदल है
1: जगते स्वर है परमेश्वर है
0: कल कारण है सब वारण है
1: तिजके धन है जगके कर्म है
0: मन माने है जग जाने है
1: सर्वों पर है सर्वं कर है
0: सर पासे है सर्वनाशे है
1: करणा कर है वसों पर है
0: प्रभदेशर है जगदेशर है
1: मंडस है खरखंडस है
0: परते पर है करना करना
1: करना कर है अजपा जप है सपा था है
0: कृता कृत है अमृता अमृत है कृता कृत है
1: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
0: कृता कृत है अमृता अमृत है
1: अजवा कृत है अमृता अमृत है
0: नायक
1: नायक है कलकायक है
0: विश्वंबर है करनालया
1: नायक है सरपायक है
0: भंजन है और गंजन है
1: रक्तापन है जब जापन है
0: अकलंग कृता है सर्वा कृत है
1: कर्ता कर है हरता हर है
0: परमात्म है सब आत्म है
1: आत्म बस है जस के जस है प्रयास नौ सूर सूर्य नौ चंद्र

0: द्वार प्रसाद स्वय एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही लक्ष्मी द्वार प्रसाद स्वय श्रावक सुध मोसे दान के देख फिर कर जोग जति के
1: सूर सराधन सुध सुधार एक शांत मोहन एक मति के
0: सारे देश को देख रहे हो मत को न देख रस पान प्रति के
1: श्री भगवान की बाय कृपा होते एक रति बिन एक रति के
0: माते पतंग जरे जर संग अनूप पतंग।

0: हर मंगल गाओ सखी गंगवंदन करो।
1: हर गाओ मंगल नित सखी है, सोग दुख न व्यापे।
0: गुर जान लागे दिन सुबह के अपना पैर जापे है।
1: अनहत वाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस पो गो।
0: कहे नानक प्रभु आप प्रभु अंत कारण जोगो।
1: ए श्री रामेरिया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाए।
0: के काम कमाया तुझ में श्री राम जा तू जग में आया।
1: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया।
0: गुर प्रसादे हर मन वसिया पूर्व लिखिया ना।
1: कहे नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सो चित लाया।
0: ए नेत्रो मेरे ओ सच सो
2: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो सरी हर में अपना देखो।

पिता हम भारत तेरे। तुमरा अंत उचित ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सुचरता तुम ते हो। तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी। बोलो जी वाहिगुरु अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक।

की वस्त्र सोई ले जाएगा, रूस किसे सूखी जाए। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना जरूर है, एक सच है। जो ये सच उस परमात्मा के हाथ में है, इंसान ने किदों जाना, किदा जाना, कितने सारा समा उस परमात्मा के हाथ में है। सो गुरु महाराज कृपा कर परिवार को भाणा मनण का बल बख्शन। सो एक शब्द की हाजिरी लवा के आप उस तो बाद आनंद साहब का जाप करांगे। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा, गुरु महाराज कृपा कर उस विछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शन, आवागमन के चक्कर चो बचा के रखन। आओ सारे रल के आप शब्द की हाजिरी लाइए। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा।